ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर अहमद जी। लिसन, अगर आप लोग भी मेरे साथ बातें करना चाहते हैं कचरता सुहामा सरा खबर कवल वाली जी जमा सरा खबर कवल दोबारा जमा स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर दे 0336-88-85-07 बाने कालो कही और इधन को सवान अब इंशाल्लाह द खैर सरा जमा प्रोग्राम सहार पर अतनीमी बजे तासु तवलांदी की जी द अतनीम बजो नवाला तर नहो बजो पर बस सभा जमा प्रोग्राम वि ठीक जी कतासु समादा प्रोग्राम तकरीबन द यो काल दोलस दयालस म्याश दे स्वरलस म्याश दे वारी दलु जी पनाहनी बजे बाने सबाब इंशाल्लाह द खैर सरा यो लसम तारीख दी जी द सबान अब इंशाल्लाह द खैर सरा जमा प्रोग्राम सहार द नहनी मुनवाला सॉरी द अतनीम नवाला तर नहो बजो पूरी वड़ांदी की हम दगा शान चकम द मौलाना से प्रोग्राम दी जी अगब सार अत बजे न अतनीम पूरी भी बेची द मौलाना से प्रोग्राम खत्म शी नुबिया और पसी जमा प्रोग्राम भी ठीक जी नो अवरिदुन को कचरे तासु हम जमंग सरा खबर कवल वाली जी जमा सरा खबर कवल द पारा जमा द स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर दे 0315-693-594-7 बांधे जमा सरा खबर कवल जी बल नंबर दे 0336-88-85-097 बाने तासु काल कवल जी 0315 देरश अत अतिया पिंज अतिया सिफर ओवन विबानी तासु लाइव कॉल कवले शी जी कतासु ता द मेदी मसलद जी द मेदी द पारा तासु द लाइपोजाइम द मेदी शरबत इस्तेमाल की जी अग खले ची द मेदी नडेर बेंते हाई तंग दी जी द मेदी द पारा तासु जरूर लाइपोजाइम शरबत इस्तेमाल की जी सके ची द मेदी द पारा चेकम लाइपोजाइम शरबत मुंग जोड़ करे दे नदा पदे टोल को हार्ट ओबन डिविजन की द मेदी द पारा किंग शरबत दी जी वजी मवारी सरबकार की द मेदी द पारा अंग्रेजी गोलियां ने बिल्कुल में इस्तेमाल हुई जी द मेदी द पारा एस किस्म दवाया ने इस्तेमाल हुई बल्कि द मेदी द पारा सिर्फ और सिर्फ द लाइपोजाइम शरबत इस्तेमाल की इंशाल्लाह तास्तबा पूरा पूरा चिकम देगा रिजल्ट मिला।

0: Τώρα είμαστε με ζή, τάρτο που γεγίζει από τα σαπάρσι, δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα washing powder, έχω χωστηθεί.
2: Ίσμα washing powder, μάρα είμαι ζή, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλεύε χάρβαστε μούταχαν κούρσε κραλή. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder, βοήβη, ρικρέτη, ωστόλ κούρβαλα να χωσούλτη.
2: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब रो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
2: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারাউদার তে মেলা বিজি

0: या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नई बुलंदियों तक पहुंचे, कि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो, तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
1: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
2: रज़े चिखपल वतन द गंदगी ना सफा उसतु, चरता हूँ गंद बगैर रसोचना पलारु के उन गुरजाऊ, दखपल कोर टोल गंद द महकमाए बल्दियात लखवा टकलीशवी जयूनुता उरसाऊ, उखपला गले कुसा सफा उसतु, जका चे सफाई द ईमान हिसदा।
3: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن.

लम्हे जरूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

सो बिल्कुल चर्चा चलते कि हम आवाज़ और दशी और देश हमारे सुख हम बात सुन रही यानी कि रेडियो मनाटा से शरीर चार कर का बात सुन रही तो उल्टा तो प्रोग्राम के डेढ़ डेढ़ हर कले आओ बिल्कुल ठीक ठाक बुबई से आत पर जमो की बुबई और दिन लाओ वर्षे आगाज़ बाशी तरीके से रतों से कड़े भी

सो चलते हैं सॉन्ग की जानिब, और ये सॉन्ग है साहिल बग्गा की वॉइस में है दीवाने शब, और पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग है। सो एंजॉय कीजिएगा सॉन्ग, वापस आते हैं सॉन्ग के बाद।

So welcome back to all. This is me, Subodh Vardarik. अच्छा जी, मौसम के हवाले से आपको आगाह करते चलो. महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 अक्टूबर से बारिशों की पेशनगोई कर दी है. महकमे मौसमियात ने 10 से 15 अक्टूबर के दौरान मुल्क के बलाई और वसी इलाकों में वक्फे से बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की है, जबकि बाज मकामात पर जलाबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है. महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक कमजोर सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिसके बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पोटोहार रीजन और शिमाली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है. जी, इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी 15 अक्टूबर तक बारिश का इम्कान है. चित्राल, दीर, सवाद, कोहिस्तान, शांगला, बचग्राम, बांसेरा, बचाबाद और दीगर इलाकों में मौसम जज्वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 से 15 अक्टूबर के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और बाज मकामात पर जलाबारी भी हो सकती है, जिसके बायस दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है.

अच्छा जी, आपको ये बताते चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी या गवर्नर राज वजीर अजम हाउस में आज अहम इजलास तलब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी प्लस या गवर्नर राज के निफाज से मुतालिक अहम फैसले के लिए वजीर अजम हाउस में आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया है। जराए के मुताबिक इजलास में तमाम मुतलका शरकतदार शिरकत करेंगे और सूबे की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। जराए का कहना है कि इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हतमी फैसले के लिए मुख्तलिफ आईनी और इंतजामी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा, जबकि कौमी सलामती के इदारों की रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया जाएगा। जराए के मुताबिक साबिक फाटा के तमाम अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में इमरजेंसी के नफाज की तजवीज जेर गौर है। मुजवजा इकदाम के तहत सूबे में आवाम की जाल व माल के तहफ्फुज़ के लिए विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम अख्तियार इस्तेमाल करने की तजवीज भी जेर बहस आएगी।

30 सितंबर को विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के इम्कान पर संजीदगी से गौर किए जाने का बयान दिया था। बाद हजार 1 अक्टूबर को सामने आने वाली इतलात के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर इमरजेंसी या गवर्नराज नाफिज करने के बजाय तहरीक इंसाफ को सियासी कशीदगी कम करने और लॉन्ग मार्च के मामले पर नजरसानी का मौका देने का फैसला किया था।

0: चले ये प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं। कौन है हमारे साथ, कहाँ से है जी? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
0: जी सो खबर की हुई कम जना अच्छा वली उला खबर की हुई करक सिटी ना गोरा नंद दाइन ओवल के नंद गोरा शदे ओकल छ नंद ओवल
1: आओ करम ओ दस ने विले जोन हो गया
0: था ओके ना शासरंग शेख ना बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह प्रोग्राम प्रोग्रामों ने सारा लगे बोली दस पे 12 बजे पड़े दारे तो वही चीज प्रोग्राम डेर याद खान के भी चाहिए प्रोग्राम तो पड़ा था डेर याद इंतजार के
1: खबर तो का तारिक भाई
0: अच्छा अच्छा शाशा मोई दादे सो वेल
1: खबर तो का
0: जी बिल्कुल
1: राजभाई वाला इतो वाला प्रोग्राम बड़ा अख्तर लला वाला द्रे प्रोग्राम नो मतलब देर चला जी
0: अच्छा जी द्रे मतलब आर जिस या प्रेजेंटर प्रोग्राम ने दोवेल छे दामो तो देर दिया खान रखे पता द्रे के वहां यो पे के ओशाय छे कम यो प्रोग्राम तो खान देर के छा प्रोग्राम खान देर के भी दा बनवे छे रस तो सर खबर है कहूं छे तो याद करना बिल्कुल अखबला फैसला होगा ना ना ना गोरन द्रे की यू पके यू दबे ओके
1: नाइनशल
0: ब्याह दिखाओ आप के उकड़ा दवा दे यूथ कल के ना
1: बच्चा
0: हेलो खैर दे बिल्कुल नोम दे सदाए बारिशा दस रंग नोम दे अबू दर बने अच्छा दानिश शाशा सही सही नो सही था वली बोला दर तुम्हें सब अवेल बड़े प्रोग्राम के नंदे लगे छे नाश्ता ने विकड़ी सवे लाई ना छे
1: ना खूब नाश्ता कर मो
0: बस गोरा दास ही आएगा बस दास ही आएगा ना जो गोरा खूब ना अचानक रुचत सोले न खूब ना जाए अचानक सड़ा रुचत सी गना बिया पो माइंड के बजेन के से नहीं गना बिया हसन नहीं सवे लाई ना खैर गना हो बदरता वाला गना ना तो हुई है कना
1: माड़ा
0: गोरा दुमरा संदरे दर बदल इवानी मो पक्की दर्शी का नाम सर आगे दर्शी दुमरा डेरे देवरे दिली दी सही था ठीक सो डेरे मन ने कॉल के बोले जी दस बहु के कम ऑफिशियल नंबर दे पे बने बाद के कॉल हो गए ठीक सो ओके अल्लाह हाफिज़ देर मन कॉल के बोले।

0: अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सुख खबर की हुई जरा।
1: हाँ सर,
0: सुख आवाज जिक्र कीजिए जी। जी सुख खबर की नोम दोबारा वो शया। अच्छा सना हटक फ्रॉम करेक जी, सना हटक सरंग शाये। अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम और भाई उससे वाले गोल रोटी सलन हर सुम बहुत कड़ल। अच्छा उस वे पे खबर करना बहुत या नदी सब बखबाई मतलब सालन के
1: भिंडी।
0: अच्छा भिंडी दी ना नो भिंडी हो मौसम तेर ना दें तकरीबन तेरे दो बने दें बस गोरे भिंडी है मो फेवरेट डिश थे ना बिल्कुल दस बस भिंडी हो माशाल्लाह मुखले फेवरेट थी दिन का फायदा और कभी से हद था जी जी तपोसो का कदा से खबर आई बाबा ऑफिशियल नंबर बने कॉल कोई सही ना अच्छा मतलब ना लगा तस्वे सरंग लैंग्वेज से वाला वे हर सड़े पे बीच गसा अच्छा ना अनुपचार ना दस मतलब दस टो लैंग्वेज सड़े जकी छे चेर तक यहाँ जी गा बस अगर लैंग्वेज तो दर्शी हो आगे मुताबिक बदल तक हल को सर खबर है कभी मुश्किल नहीं होता सही सही नो तिरंगे सही था डेरा मना ना बस आते ना गोरा पर नजर में नगे के ना शाह सही सही नो बस गोरा लैंग्वेज दिखे ना ठोल सके बोल बचार दी वजह था जे अक्षर बा मतलब दासे तो से कतली भी यूनिंग दासी कास भी जागा नहीं झुकेटेड भी मतलब पख्तूनख्वा पख्तूनख्वा शाह पाकिस्तान ही पाकिस्तान के पख्तूनख्वा पख्तूनख्वा पख्तून शाह पख्तून सही डेरा मन ना कॉल के बोले से गुरुगाम के कॉल मको और दिन लो नोर बस बिल गोड़ी ठीक शो डेरा जिया तो मन ना कॉल के बोले अच्छा जी बिल्कुल जो मौत अलग शुकम देगा ना हगा डुमेल से ठीक शो और डुमेल चिकम डुमेल वजीर दी गना के तो पता था अच्छा जी लैंग्वेज खबर दे उकड़ा नो गोरा प्रचार हद दे छे मतलब सड़ा चर तक जी गना तो मैं दसे अनएजुकेटेड का सुबह दिखे दे लेगा ना जी चर तक से पंजाब था या सिंध चर तक लूट सीखे ना बियाल तकी छे मतलब दस प्रचार बिया वर्ष वर्ष दस से पछताना के बियाल तकी बिया खबर बने ना पीरियड डेर मुश्किल बने पुलिस याल तकी बजार दा दुछ मतलब टो लैंग्वेज स्टडी जके खैर जरूरी ना मतलब टो लैंग्वेज बजके खो कुछ स्टडी होगी सेबल और स्टडी तभी मुश्किल आत नहीं नो डेरा मनना अच्छा जी लॉन्ग मार्च का आज सातवां रोज है। सोहेल अफरीदी ने काफिलों को कल सवाबी पहुंचने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के 4 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च के शुरुआत 400 तक पहुंच गए हैं, जबकि वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने काफिलों को कल सवाबी पहुंचने की हिदायत कर दी है। वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने शबकदर चौक चरसदा में खिताब करते हुए कारकुनों को 11 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान से सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत कर दी है। اور گزشتہ روز ہی گورنر خیبر پختونخوا نے سوابی کی جانب مارچ کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سوابی کی طرف منہ کرے تو انہیں لگ پتا جائے گا. یاد رہے کہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ 2 اور 3 اکتوبر کو مذاکرات کے متعدد ادوار ہوئے، تاہم فریقین کے مابین معاہدے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، جس پر پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی سمیت متعدد دیگر مطالبات کے حق میں لکی مروے سے لانگ مارچ شروع کیا تھا. اور لکی مروے سے قافلے کرک گوہاٹ متنے خیبر اور پشاور سے ہوتے ہوئے چرسدہ پہنچے، جس کے بعد شرکا مردان سوابی اور ملکن کی طرف روانہ ہو گئے.

0: चले नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कौन है हमारे साथ, कहां से हैं जी? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। चले देखते हैं नेक्स्ट कॉल कौन है हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुख बड़ी क्यों गेम से ना
1: मनूर
0: गुल फ्रॉम ब्यूटीफुल करक। मनूर गुल तो प्रोग्राम के हर कल्ले बखेर रागले द करक ना खजी सरंग तू सही के ना डेरा मन ना बस दस मंडा मंडा रोगल के ना लश्की लेस खरोगल मोहच 11 बजे तो बजर वरसे जो हो रवाना नजल खैर दास कल कर बगैर सी खजी इधर तो चे अवल दल कौन दिखड़े के ना मखी दिखड़े दे अच्छा बलर जे हक करे वो मतलब अटेंड से लगा बोला इदा है सही दा बस अटेंडेंस बिल्कुल मोत पता वो लगे तो अटेंडेंस में लगे वो लगे खजी इधर तो है छे तो से मतलब कोर चार मान मोक डोज बिल्कुल फ्री है शा आसे डेढ़ सर तर जो ब्रो कवे व्यांश डेढ़ सर तर जो ब्रो कवे यस नो के जो ब्रो कवे सरंगी पोई नसल खबर माने अच्छा अच्छा शा सही सही प्रोग्राम की बदारत हुआ सब लुबाड़े वो लसलोमी सौब खूब वो सही कहना प्रोग्राम क्यों बेगा इधर तक खड़े दस न बारह बोरे दिश भाई आओ कहना बेगा प्रोग्राम खड़े दे ठीक सो डेरा मन ठू बोलो तो सलाम दो बरस सही ना ओके लाफिज कॉल को डेरा मरना

सो आते हैं आपके मैसेजेस की जाने, आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर लास्ट में मौका मिला सो आपके कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज ऑफ सॉरी फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो चढ़ाई माशे थारू भाई सरंगी आई मुस्कान खटक डेरा मनना यो जहान मनना जो बिल्कुल ठीक ठाक फिट वाट। थैंक यू मुस्कान खटक। और अदील मैसेज कड़े दे वचा मीन उल्फत संदर अर्थ वो लगे वहां ए नया मीन उल्फत पठार था वो रोचा वहां जी।

और जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तारिक भाई, ये मेरा सेकंड मैसेज है आपके शो में। भाई, योर शो इज रियली फैंटास्टिक एंड योर वॉइस इज सो स्वीट। मैं हूँ फिजा भाई। भाई, मैंने अपने सिस्टर के साथ एक शर्त लगाया है। वो मुझे कह रही हैं कि तारिक भाई पेशावर का हैं और मैं उसे कहती हूँ कि वो वजीर हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं पेशावर का रहने वाला नहीं हूँ बल्कि डोमेल का रहने वाला हूँ और मेरा ताल्लुक वजीर ट्राइब से है। शर्त और नौ गुट शाह सद और सर लगे बोली दिवास नौ खुला ची बिल्कुल मोह गटल देना। तो भाई अब जरा क्लियर बता दे कि जी जी बिल्कुल मैंने बता दिया। थैंक यू फिजा, मैसेज करने के बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? फाइका फातिमा कैनात था, मिर्जी भाई था, गुलोनी था, डे डी सलोमुना मैसबा एंड रफिया वजीर। चले थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रकीब पटेल कह रहे कि मौत से बढ़कर भी आइसिस जा होती हैं, अकेला बैठकर ये क्या लगे, सॉरी समझ में नहीं आया। बहुत शुक्रिया रकीब पटेल। और हाल ऐसा कि बैठे बैठे खो जाते हैं हम महफिलों में, हंसते हंसते रो जाते हैं, हम कैसे बताऊं क्या गुजरी है इस दिल पर, बस सब ठीक है कि कहकर सो जाते हैं हम। जी थैंक यू रखी पटक। अच्छा जी, रखी पटक कह रहा है कि चले बहुत शुक्रिया रखी पटक। थैंक यू रखी पटक, बहुत शुक्रिया। रखी पटक जरबुरान दिखा। ओ माशाल्लाह, क्या मतलब सिग्नल चार खान की भी कहना देखा मखाजन और रसवी, मतलब प्रोग्राम था, प्रोग्राम की कॉल या मैसेज जरूर कभी क्या आप व्हाट्सएप बने वाले ने भी या दिन लगा मैसेज बने वाले ने भी आप कॉल बने वाले ने भी नौ रखी पटक जरबुरान दे। नेक्स्ट, वेलकम टू द शो तारिक भाई, आई एम अताउल्ला फ्रॉम रजमक। सलाम टू माय डियर ब्रदर नियाज एंड ऑल लिसनर्स। ठीक है, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम सुपर डुपर सरंग ये शेख ये खना, वेलकम टू द शो, मैं अन्नू गुल फ्रॉम तख्त नसरती। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच अनुगुल, आपने मैसेज किया तख्ते नथरती से। और अच्छा जी, माँ तवीज करे दे बेगम, अच्छा वह जो नजर नशे तवीज होगा, माँ तवीज करे दे सको नजर के ना डेरा डेरा मन ना। अच्छा जी, आपने सॉन्ग की फरमाइश की है, चले मैं ट्राई करता हूँ, लास्ट तक प्रोग्राम सुनिएगा। बहुत शुक्रिया अनुगुल, आपने मैसेज किया। और जी नेक्स्ट, सलाम तारिक भाई, सरंग शख ये ठोल निसर में सलोम दाई ज दिल नशीन या चांदी छोकना। ठीक है दिल नशीन, बहुत शुक्रिया आपका भी। नेक्स्ट, हेलो एंड हाय सलाम भाई, सरंग ये शख ये कना गुड गुड आफ्टरनून टाइम भाई, रोटी दे रोटी दे खड़ ली दो खना ना रोटी मैंने तो खड़ ली भाई। सलाम टू बोम ऑफ जलाल मलिक खान मलिक रोशी खान बाकी अल लिसनर्स को। आपकी चिली मिल लिसनर्स आमरा खटक और आरमा खटक, चले थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
Thank you. Apne join kiya next. Assalamu alaikum. Welcome to the show. Wow, show is yummy, yummy and very wonderful. And welcome to our listeners. This is me, the great Malika.

और थैंक यू गरुड मलिका। गरुड मलिका कहती है कि कहते हैं कि दिल का जहम कभी नहीं बढ़ता, मोहब्बत सजा बनती है, मोहब्बत सजा बनती है जिंदगी बढ़के। अच्छा, दिल के जहम कभी नहीं बढ़ते, मोहब्बत सजा बनती है जिंदगी बढ़के। चले थैंक यू गरुड मलिका, बहुत शुक्रिया।

और फॉर बेस्ट माही बेस्ट आयशा बनवाल जमाउस्ता लेवानी मीना पमस्के चाउखड़ल दसवर था विजुना अच्छा जी थैंक यू तारीख द फ्री मैसेजेस बांधे मो आदि कवि ब्याबा टूल अच्छा जी

0: थैंक यू सो मच चमचम, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त नाम है। जी नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: सुख खबर है कि वे क्या नाम? सही था, ठीक था, बस हाउस सही हो तो सही। बाबा तो वही हो ना, बाबा पैसे इधर कभी के ना ब्रश के 100 रुपए इधर कभी 100 रुपए इधर कभी माड़ा गोरा 100 रुपए और तब 1000 रुपए भरू कभे के ना सही था, ठीक डेरा मन बस शफारुक सॉन्ग दर्द प्ले गा सही था। ओके लाफे डेरा मनना कॉल के बोले यो जहान मनना नो बिल्कुल बरसी देश चंद्र पत्थर बंदे। अच्छा जी सो बिल्कुल शफारुक पवस से दागा संदरा बोर भी और देना बात सी कमा दे बेबिया जर सी।

0: चले नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कौन है हमारे साथ, कहाँ से है, टाइम भी कम है, जस्ट 13 मिनट बाकी है। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ। ये कौन है, कहाँ से है?
1: शकीलान डोमेल से।
0: ओह माय गॉड, शकीलान कैसे हैं आप? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? रोटी खाया कि नहीं खाया?
0: मैंने नहीं खाया है अभी तक, और शो के बाद मैंने रोटी खाना है।
1: अच्छा, सिर्फ नाश्ता किया है?
0: हाँ बिल्कुल, नाश्ता किया है और रोटी नहीं खाया अभी तक।
1: और तो हमें खा रहे हैं।
0: अच्छा अभी खा रहे हैं आप?
1: बस खाए इंशाल्लाह।
0: खाया है? खाने में क्या खाया आपने अभी? हेलो हेलो हेलो शकील खान। अच्छा जी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। चले बहुत शुक्रिया, शकील खान ने कॉल किया था डुमेल से। और बस खबर है वैसे रोटी में उखड़ा, पता है रहता ना वैसे रोटी कैसे उखड़ा। वेलकम टू द शो तारिक सर, हाउ आर यू? आई एम फाल्कन बख्तनूर फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान। शो इज वेरी नाइस। मेरी तरफ से तमाम लिसनर को सलाम और स्पेशल सलाम एमएसजी को। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।

0: अच्छा क्रिकेट के वाले से आपको ये बताता चलूं कि पहला T20 मैच साहिबजादा फरहान और मां सदाकत की शानदार बैटिंग पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानब से हदफ के ताकब इनिंग्स का आगाज साहिबजादा फरहान और फहर जुमान ने किया। पाकिस्तान की पहली विकेट फहर जुमान की गिरी। उस वक्त पाकिस्तान का मजमू स्कोर 54 था। फहर जुमान ने 21 रन बनाए और इशान मलिंगा की गेंद पर कैच आउट हुए। मां सदाकत ने शानदार बैटिंग करते हुए 28 गेंदों पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से नेक्स्ट सेंचुरी बनाई और यूं पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी है। चले नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: डेरा मनाना जी सो खबर है कि नाम फालकन बख्तानूर वजीर
1: करेंगे
0: बिल्कुल ठीक ठाक तखपलो बंदे से
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: आर एक ना लिखे गा और सिर्फ सिस्टम तो बार एक ही लिखे
1: तालीम
0: देख रहे थे
1: दुआमपुर
0: दे वाले थे मतलब मैसेज लिखे लैसे शाह ठीक से बदाशाह खबर मैसेज लिखे लैसा अनुर शाही के नाम
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: हफ्ता में माशाल्लाह डेरा जबरदस्त है तेरा कड़ा नुबा तू सदा दे अरसी मौजूद ही प्रोग्राम था
1: बस खुद आवाज बिल्कुल मुझे
0: हाँ जी डेरा मने ना 100 घंटे खूब दोगे
1: ना
0: नो अखबल अच्छा चुके बल चाहो चतकड़े
1: ना कुछ बंदे हावीश
0: ना नो मतलब तो दबे बेरोड़ी दिस रंगे लगे वाली वो अम्मा वो दिस रंगे हो रहे था
1: प्रोग्राम वादे के बाद पसंद मिलता बांधे 11 बजे में प्रोग्राम वो लोग आवाज नगर दे मुझे देखो बस मुझे कहा राज भाई प्रोग्राम चालू हो जाए कल आता आवाज रहे तो माता पता वाले गए थे चलो अरे सिर्फ राज रो रहे थे।
0: हाँ जी हाँ जी सही था डेरा मनाना दादा तुम्हें संदर दर्शी
1: संदर हो तारिक लाला नरद्री मी हो जो तू पर मैसी लस्ट
0: ना नो मतलब ये चरदरी मी ना ओले वजीरवला लैंग्वेज की जमजमा कवे हंदा सरंगे अच्छा जी शाह बिल्कुल वेल से खो अखलाक उदय रोगे ठीक शाह
1: बिल्कुल सही
0: जी
1: बस मैं नशा को देखा जमजमा कर चिंता कर रहा
0: है कोशिश होगा खैर कोशिश करवा जी
1: हेलो
0: जी जी
1: एक राय दे तो दैरा दे मुरट के बादी जीवा संतो दाय
0: सही तो ठीक छोटे मनाना कॉल के बोले
1: मनाना
0: ओके लाफिज यो जहान मनाना कॉल के बोले ढीरा ढीरा मनाना

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: Τώρα είμαστε εμείς, δάρτο που γεγέζει από τα σαπάρ, σε δεύτερα σε έχω χαστηρί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα washing powder, ο χαστηρί.
0: Ίσμα washing powder, μάρα εμείς δί, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κέζε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βελκόλ τα ρεχανά, τα γιλέ βε χαρβάστε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλάνα με κούρτα ίσμα washing powder, ο ρολ σε ρικρέ δί, ο στόλ κούρβαλα να χωσούλ δί.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की ओ दिनोर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर अदा कपड़े सा पई पवा लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षले रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफ बने বলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব স্যার অর্ডার তে মেলা বেশি।

हमें सुनाते हैं हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपकी दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 पर आपके

शिविर को ग्रामीण सराव सबीर खान खाले को डेर छु तमन्ना यो जहान वना पर गाम तर रोले यो जहान वना वर सराज किमने कहना सिंगर काका वजीर वाला गाना हादर बनोर और सराज कहना तोर दे टेकराई दाई अब्दुल्ला वजीर गाना दोर सरावर खंदीना मासे जन ओखले

0: अच्छा नहीं मिली मैं खबर की
1: नहीं
0: अच्छा शासाई रोड डेर जो था प्रोग्राम के देखे आल को यो जहां ना देखी
1: भाई
0: हाँ
1: फातमा
0: फातमा दे सलोम दाई
1: ना
0: गांव के अलका वाले यो जहान ना
1: दे
0: रहे तमाना।

0: सिंडलो का चचका पके समाज गड़े दे
1: और सरा मिन खान हम बिल्कुल प्रोग्राम हो रहे मिन खान ढेर जो तमन्ना शुक्रिया प्रोग्राम हो रहे ढेर जो तमन्ना पर स्ट्रीमिंग पे जरिए बना मिन खान हम प्रोग्राम हो रहे राजा भाई जान असदर सराय साइदो मनना मनना शुक्रिया

अशा वडके माप्रे वडके माप्रे फोय माकडे औसरा तवायची यरी देने को माफ फ्रॉम दवड़ा जलके देर जो तमाना दवड़ा जलके फिर गांव के मैसेज के वाले जो जहानों ना तफादे वड़ बिल्कुल वर्ता डाले शुना अच्छा तो दोबारा रोल था कहना चिकन कहना दोबारा चेयर का गाने वाला चेयर रोल ले कहना चिकन वाला बाद खिदर से चिकन डेर वे कहना नूर चिकन कड़े न होड़ी साइडो ओ अच्छा बाला दसों की कहना चे

नदी भारत मुझे ओके गुड नाइट सामना यो जहान नॉर विदिंग के प्रोग्राम से टाइम जान छे बिखेर सर खत्म रो समाचार दचर द प्रोग्राम रो बोले यो जहान वन की यो नने वन की इसला के हेरो बल प्रोग्राम से ब्याज रेडी वो सब बिल्कुल मुतार के विजय जात आदा का सोंगलिश के सर और टाइम चिक मिले ना यानी सिस्टम न चिक मिले पर टाइम ने बांधो वो लिस्ट के शांत चिक मिले ना वो साबु इंशाल्लाह से चिक मिले ना खेलता छोटी का तारीख भाई पठे मरो बे खेलता छोटी दिमो और फार्मेसी सो चिक मिले ना आखिर से बिहारस भाई दर सर की साइड वो सो चिक मिले ना अजो चिक मिले ना बिया सो से बाला दर सर जरे और तरह होता पर मो पखवल दुकान की आसत है और स्पेशल दरीमा दे थ्रस यावल मुझ किमने केना लुसी रहते आखे दे फरा दरीमो ओवर सर दे हावे दे हाल के हावे दे हावे दे हावे दे वाले हावे दे सिटी वाले स्पेशल दरावनी साइड ऑफ स्पेशल स्पेशल स्पेशल लक्ष्य तोरशी लावंगिन शिना वही जी नहीं चे तोरा शिरां दा हर सरी नानो नो और थिंक के जसा से वो सुधर राहुल जसा चार तो से हार से आवर से मिस बापल दुकान के जरूरी से थे चलो